0: पहले तो उन्होंने निराश की थी, सवाचार में इतने बिठाए मुड़के उनकी तलाक में जो नहीं होना
1: वाहिगुरु साहिब जी। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे।

सारे गावन तुदनों पंडित पढ़नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनों मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माछ पयाले गावन तुदनों रतनों पाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले।

नरचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाहपत साहेब नानक रह न रजाई आसा महला पहला सुन बड़ा आखे सब कोए केवड़ बड़ा डीठा होए।

वृक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो ऋण गाता जे अस्तुचता शरणी परे तिनगे दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन भग परे तिहारे तिनगे तुम संकट सबटारे जो काल को एक बार ते आए है ताके काल निकट न आए है अरछा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाए ने हर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शब सके न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोख ते रहा खड़केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्त जप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकला मन बांझत फल पावै सोई दुख नाथ से व्यापद कोई अड़िल सुने गुंग जो याहे सुरसना पावई सुने मूर्छित लाहे चतुरता आवई दुख दर्द भव निगड़ना दिन्नर गेरा है हो जो याकी एक बार चापई को कह है चौबई संबत सत्रह सहस प्रणिज अर्ध सहस पंथीन गहज पाद्रव सुधी अष्टमी रववारा तीर्थ सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखया ने त्रया चरित्रे मंत्री भूप

ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन मजियां वाधाइया राग रतन प्रवार परियां शब्द गावन आइया शब्दोता गावो हरि केरा मन जिन्ही वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना

काल विजतिन वस्तु पयो सत संतोक विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंछै तिसका हुए उधारो ए बस तजी रह जाई नेत ने दरा गुरधारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा किता जातो नाही मैं नाहूं जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुरु सज्जन मिलया नानक नाम मिलैता जीवा तन मन थी वह हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोय नाहे उथे तेरी रख अग्नि ओद्र माहे सुन के जम के दूत नाहे तेरे छिड़ जाहे भौजल बिखम सगा।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

काखर किनका एक जैसी बसा बंकी महिमा गणनाया वायकी अकेद्रस्तारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनि सुखेमर प्रभ नाम भगत जन के मन विश्राम रहाओ।

प्रभु सिमरन कज बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अंधन जागे, प्रभु के सिमरन पौ नाम व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु का सिमरन सार के संग सर्वन दान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन विनसै दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नाने, प्रभु के सिमरन दरगाह माने, प्रभु के सिमरन होय सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल फला,

प्रभुकृष्णदृष्णं बुद्धाय प्रभुकृष्णसौख्यसुद्धाय प्रभुकृष्णनाहिन्दं त्रास्वा प्रभुकृष्णपूर्णयास्वा प्रभुकृष्णमनकिमलजाय अमृतनामृतमहस्वमाय प्रभुजीवसस्वाद्कीरसना नानकजनकदासन दसना प्रभुको सिमरसे तनवन्त प्रभुको सिमरसे पतवन्त प्रभुको सिमरसे जनपरवान प्रभुको सिमरसे प्रभु प्रदान प्रभुको सिमरसे बमत जय प्रभुको सिमरसे सर्व के राजय प्रभुको सिमरसे सुखवासी प्रभुको सिमरसे सदा विनाशी सिमरन्ते लागे जने आप दयाला नानक जन के मंगर वाला प्रभु को सिमरै से परोपकारी प्रभु को सिमरै तन सर्वबलहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तन आत्म देता प्रभु को सिमरै तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तन अनुद कने रे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे सन कृपा ते अंदन जागो नानक सिमरन पूरा पाग प्रभु का सिमरन कार्य पूरा प्रभु का सिमरन कबहु न चूरा प्रभु का सिमरन हर गुण बाने प्रभु का सिमरन सहि समाने

जय मार्ग जात अकेला तय हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम सदा त्याय नानंग गुरु परम गत पाई है।

हरदस करत संत दिन रात हर हरि औखद साध कमात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नौ दान।

हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन को आप्रभु दीना, हर हर जन कै ओठ सुचाणी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओठ पोत जन हर रस रचय, सुन सुमाद नाम रसमते, आठ पहर जन हर हर जपाय, हर का पग प्रगट नहीं छपाय।

उत्तम के कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम के मैमा संत रवसाय संत प्रताप दुर्त सब नसा संत का संग बड़ भागी भाई।

चीना मन अपने ते ब्राह्मणा उपेख सकल सृष्ट साजना सुख दुख जन समदृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा।

बराय संग सहाय सो आवे न चेत जो बैराय तसो प्रीत बलुआ के ग्रह पितर बस नंद खेल माया रंग रसाय

रोग दिन हर प्रभु छोट कै लगयान सुहाए नान कहू न सी जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।

अपने अमान कछ बार सवाले अज्ञानी मन रोस करे अपने प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे।

मिथ्या चरण पर बेकार को ताव मिथ्या मन पर लोभ लुभाव मिथ्या तन पर उपकार मिथ्या बासले तो बेकारा।

बृहस्पति देह प्रसाद छति अमृत खाए चाकर को रख मन माहे देह प्रसाद सुगंधन तन लाभ तिसको सिमर परम गत पाव है जय प्रसाद बसा सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह सांग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना

अपजन साल बढ़ाई नान सा प्रभु बने आई साज का संग न कबहुतावै साज का संग सदा सुख पावै साध संग बस गोचर लय है साधु कै संग अदर स है साज का संग बस थन ऊचय साधु कै संग महल पहुँचय साध का संग दृढ़ सब धर्म साग संग केवल पार ब्रह्म साग संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध का संग

आप ब्रह्म ज्ञानी का दत्त बुढ़पागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर नानक। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पे, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कत्या ना जाया दाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की कल ब्रह्म ज्ञानी जान, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सा जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुख जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ,

दास प्रक्रिया के आत्मृता वैद्यमोत्सव कहाँ वह तर तव स्व सदानंद तय नहीं व्योग तय स्वर्ण तय स्वयुष्मी तय स्व

गुरुप्रसाद अपने आप सो जैत की जानो तृष्णा बुझे साहब संघ हर हर जस कह सर्व रोगत ओ हो हर जन रह तन दिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण।

जिन प्रभु जाता सो सो भावंत सकल संसार उदर तन मंत प्रभु के सेव सकल उदाहरण प्रभु के सेव दुख विचारण आप मेल कृपाल गुरु का सदा पाए निहाल उनकी सेवा सो ही लागे जिसनों कृपा करे बड़पा।

होगा। हरण पर जाका नेत्र भोर तिसका मंत्र न जाने हो रहा न ध्रुव मंगल सज्जा कह सर्वथ उतनी करता कह राज में राजोग में जोगिता मृत विसृगिस्त में भोगित्याय त्याय भगत सुख पाया नानक नानक तत्पुर का किन्यंत न पाया।

ठाकुर को सेवक जन संग प्रभु का सेव नाम के रंग सेवक को प्रपालन हर सेवक रखे निरंकार सो सेवक जिस दया प्रवतार नार सो सेव सा सुमारे अपने जन का प्रदा ठाके अपने सेवक के सर पर रखे।

मन मेरे तिनके ओटले मंत ने अपना तिन जन दे जन जन अपना प्रभु बचाता सो जन सर्वतो का दाता तिनके सरण सर्व

शरणावृत सत्यावे मन वित्ते सगुरु के पास सत सेवक के कार्य रास सेवा कर तो इन्हें कामे तिसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्व गुरु काम

अनेकता गरुड़ पागे पाया सफल दर्शन पे कतपनेत परसद चन का निर्मल रीत पेट संग राम गुण रव पार ब्रह्म के दरगाह गव सुनकर वचन करना गाने मन संतोकात्म पतियान पूरा गुरु आख्यो का मंत्र अमृत पेख सन गुण बिंद कीमत नहीं पाए नान जिस पावे तुझ लय मिलाए जेह एक तदनेक सतपुर पूर्ण बाबे काउ बोल न पुत प्राणी अगम गोचर पर निर्वाणी निराह निर्भय सुखदाई तंकी कीमत किन न पाई अनेक भगत बंधन निध कर चरण कमल हृदय सिमर सद बलिहारी सदगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत सोय इस पुर का नाई कदे बिना सो जा के मन प्रगटा गुणता

सारस्पदी संदेश नाम ले करो विचार एक सिमर नाम यदार वर पासम यद्व सारे चरण कमर इधमायर उतार करन कारण सो प्रसमरात दिल कर गो नाम अरवात योतन संचो व पगवंत संजना का निर्मल मंत्र

संग परे जिस शोभा को कर पली करने सा शोभा बजर के चरण को पावे रोग न जाए रोग मटारे अवखदलाये सर्वन धन मेरे नाम धान तपना दर गय परवान।

माए तुम तो बिन नहीं किसो ये अपन सो सब जगत भरो को प्रभु जी आप जाए सतनाम सोए जन पाए सो समर से तत्का बेता नान सोल सिद्ध का देता जी जंत्र सब तक हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ

अमृत बचन के गुनगाओ प्राण तन का यह सुहाओ आठ पैर पापे खो नेरा मिटिया ज्ञान में से अंधेरा सोन बद सिर दे बसाओ मन छे नानक पर पाव हल पल दुले सुवार राम नाम अंतर ओर तार पूरे गुर के पूरे दिखिया जिसमन बसे ते साज परिखिया मन तन नाम जपोल बिलाए दुख दर मन ते पव जाए।

काकरचित सुखमनि से गोविंद गुरु नाम जिसमन से सुहोत निदान सर्व इच्छा ताके पूर्ण होए पर धान पुरख प्रगट सबलोय सब ते उच पाए स्थान बहु न होवे आवन जान।

उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल पर गा सब के मैं सकल तेवदा सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ये पर ते जन कह मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने यो निदान जपे।

मन विश्राम कोट अपराध सात संग मिटाए सुन कृपा ते जम ते छुटाए जाय मस्त करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जैसे मन बसा

कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पहुं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै।

दूर कथना कथी ना आवे तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विग सेवे प्रवाहो।

आपे आप निरंजन सोय जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निदान गावियै सुनियै मन रखियै पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाय।

असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार

सकत के अचाल मूर्त अनुपहो प्रकाश अमतोज कहिजे कोट इंद्र इंद्रान साहे सहान गणिजय तिरपह मही सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत तुवै सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत

0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी आप संगतां ने अमृत वेले तो गुरु घर हाजरियां लवा के नाम सिमरन नाल जुड़ना किया, साहिबां दे दर्शन दीदार किते, सुखमनी साहब दे जाओ पांच बाणियां दे नेतने मते सतगुरु साहब जी वालों बख्श मुख वाग सरवण किए हैं। सतगुरु साहब जी रहमत करन, समुची बाणी पढ़दियां सुनदियां भुल चुक दी खिमा बख्शन, सब दी दर हाजरी कुरबान करन। सुआव हुण श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन दी रमता हो रही है। आप संगतां दी सेवा विच सतकार योग रागी पाई सुखजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब वाले आप संगतां नूं कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। सो समूह संगतां वालों प्रबंधक कमेटी वालों भाई साहब दे जथे नूं जी आया। सो आप संगतां दी एक महीने वास्ते सेवा करनगे कीर्तन दी। सब संगतां ने समय सिर पहुँच के लाहा लैणा जी। कल नूं जो जुगो जुग अटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी उन्होंने पहले प्रकाश दिहाड़े गुरु घर विखे मनाए जाने हैं। सो श्री खंडपा साहिब ब्रह्म हैं जिन्हों दी संपूर्णतावां शाम नूं होणगियां, फिर विशेष दीवान सजनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

मन का सुत लोभ है जे वसुत कूड़की सुत वेखना परत्र परतन रूप कन्नी सुत कन पहलाए तुम्हारी खाए नानक साधवी बद्य जम पर जाए महला पहला सब सुत।

काहे जनम खनोय दास को नान पर धर्म न परिणत विश्वास तन अपने वही जो जीव जाते जीत को नान पर धर्म न और जाते जीत मृत पयो सुजे नहीं काल पंच जान को नान नरबामे को न पये भगवान तंदरा संपल संदिन अपने कर्मान इनमें कसं की नहीं नान सच्ची जान तो वान पैहार न हर नाथ के नाथ को नान से जानिए सदा बस तुम साथ तन तन जेता को दियो तांसो न न तीन न को नान पिना बावरे अब क्यों ढोला जी न तन न तन तन संपल सुख दियो और जो नीचे ताम को नान से दे बना से मत गाय न राम सब सुख दाता राम है दूसरा नान कोई को नान से दे बना ते स्मृत जाता है ਜਿਸ ਮਿਰਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਨੀਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਔਰ ਕਰਤਾ ਨੀਤ ਪਾਂਚ ਪੰਥ ਕੋ ਤਨ ਤਿਉ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਪਜੋ ਨਾਨਕਾ ਨੀਨ ਪਾਏ ਨੇ ਮਾਨ ਘੜ ਘੜ ਮੈਂ ਅਰਜੂ ਵਸੈ ਸੰਪਨ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਜਵਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਾਰ ਸੁਖ ਦਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਲੋ ਭਗਵਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਸੁਣੋ ਭਗਵਾਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਨਾ

की सेवा जागरी पैराज कार कमाए जे हा सेवै ते हा होवे जे चले ते से रजाए नानक सब किचे आव है अवर नान द

मन कमाया मोह है नाम ना लगो प्यारा कूड़ कमावे कूड़ संग्रे कूड़ करे आहार मैं कमाया।

हरे योजन शतर चले था देही गिरजन खाई। महाराज योजन शतर चले था देही गिरजन खाई।

जय पावें तह दे पियरा बोले मीठली भाई साच कहे फिर पाए बिरह बेदी सच वसी भाई।

सूर्य मृग नदन परम दा परम पुलाया अमृत अजबिक संग्रह करता है आप खवाया गौरमुख विरले

तान संपह माया संचय अंत दुखदाई कर मंदर मैल सवारियां के साथ ना जाई हर रंगे तुरै नित पालिया कित काम न आई जन लाभो चतर नाम सेवंत हो सखाई जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई श्रोक महला तीजा जा

जिनके कर्म अंदर में अर्थ राय सब पवित्र है, जिन गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाते, तिन के तुरे दीन खुर गी सब पवित्र है, जिन गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते, जिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित्र है, जो बोले हर हर राम नाम हर साते, जिनका पुत पुनः से गुरु में सिख गुरु पै जाता है, श्लोक महला तीजा।

सदावसाय। बिनु सतगुरु नाव न पाइए बुझो कर विचार, नानक पूरे पाक सतगुरु मिले सुख पाए दुचार। महला तीजा।

दुख नानक सेओ सासंग एन दुख ते निकसेओ नानक एक परितना श्री महल्ला पंचमा पानी पक्का पे सो संत आगे गुण गोविंद जस गाय सास सास मन नाम तुम्हारा।

बैन प्रभु जी को नाम जो तुम चैन वो प्रकार खो जाय सब ताको विकम न जाय लैन राव जाप ताप पर मन बसुदा कर।

पचिने मिटाय ना ब्रह्म के का इतना सिमहल्ला नाम साधो ए जग परम पुलाना राम राम का सुन छोटे माया हाथ बिखन रहो मात पिता पाए सतवंता का कहे दास लपटाना जो वचन प्रभुता के मन में अनंत रहती बाना दीन दयाल सदा दुख पंजन ता सो मन न लगाना जन नानक कोटन में जन गुरु को पहचान ना इतना सिमहल्ला नाम ते जोग को जो तन जानंदो मो माया मुक्ता फल जय काट माहे बचन रहो

जन्म पाए कत पलो ना किन्नो ताते गडरो मन बच कर मार गुण नहीं गाए यह जी सोच तर हो गुरमत सुन कच ज्ञान उपज पास जो उधर पर हो कौला ने प्राप विर पहचानो तब पतत तर हो तना सिर अल्लाह पहला कर बुझा सुनिए क्योंकि सिर प्रसाद गुर सागर तने पर पूरे मन सच चुके ने दूरे आधा चौथ के प्रभाव सरवर में हम प्राण पत पावे क्या भाग पपड़ा चपड़ी ना है कि चढ़ी रुपये में न जाए राव राख रहे चरण तरह विचारे दुविधा छोड़ पाए निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुरु राखे सरवर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर साए समाए सरवर में हंस हंस में सागर अकत कथा गुरु बचनी हाजिर को सुन मंडल का जो कि वैसे नार ना पुरुको को कैसे त्रिपण ज्योत रहे लिवलाय सुर नर नाथ सत्य सुर नाय आनंद मूर अनाथ दारी गुरु भगत सहज विचारी

बचत तर मेरे मेरे करत साधे बेहाब कोई असर भेट संत मेरे लाए सगल चिंत ठातर सो मेरा रंग लाव पढ़े सग पढ़े रे सगल भेद न चुके मन भेद कहन न तेरे मेरे घर के पंचा कोई असुर भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाय बंद मैल लाए कर कोठा कर एक दिल न मन कद पाऊं सा संग हर हर सदानंद ज्ञान अंदर मेरा मन सुनाने सगला आश्रम की ने मनवाने पति ने बबेक ही न दही तो कोई पाये रे पुरख विदाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन के दुर्मत मल खोए करम धर्म जुगता नमित ना हित करता गर्भ गर्भ पढ़ कहीं ना लिखे जिद पेटिय सब मूर्त कर रहे सदा कीर्तन सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों पे कह मन हट जो कमावे चल न लेके पाए बगल ज्यों ध्यान लावे मारे तारी कोई असुर सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई ते पेटे गत हो हमारी सुप्रसन्न गोपाल राय का तेरे बंधन माए गुर के सद मेरा मन रहता सदा सदा नान पेट निरपय को बंद सुख नानक ला देर चरण पर रहता सफल सफल पै सफल यात्रा

तीर्थ नाम जाओ तीर्थ नाम है तेरे शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुरु ज्ञान साचा थान तेरे दल पुरु सदा दसरा नाम अरका सदा जाचन देव हो प्राव तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरु वाक निर्मल सदा चरण चाहे तीर्थ मंजना सात न लागे मैल के अमर तो ये गुणे हार पर किसको रोई है विचार मारा तरे तारे उठ दो न आवे आपल परम ज्ञानी चाहे सच पावे आनंद आनंद आनंद आनंद हर के सच दुख रोग पर आ रहे सच ना पाया गुरु दिखाया मैल ना सच मन संगत मित मिला पूरा ना अपनो गावे गावन हर सब सो अपनो सला सचे मन सदगुरु पंडान दे अमृत फिर संग ना वे सहज ना वे प्रणित संगम सत फिर संग पावे सहज ना वे बिणित संगम सत सत आराधे कंकर सचा नित दय चढ़ सवाय सा गत संग मित संत संग कर नजर मेल मिलाया कहन कह सब खोए केवड़िया किए मूर्ख ने जय जान समझा साखिए सच गुर के साखिए मूर्ख पगे तित मन मारिया मेरा कोस करा वह विखला दे सब जस्तु जय गुरु मेरे आखन तोड़ना भगत भंडारे पर रहा सोई नानक साच कह बना तिवन मन जैसे सोई इतना सुमहला

संसार ना बिना नाही को बेले बिकला दे चर पारा हुक्म आया हुक्म ना बुझे हुक्म सुवर्ण हरा नानक साहेब सब जाप सत सदन हर पर स्वयं दरबार शब्द सुहाय दियो बोले अमृत बाण रचन सुहाय दियो रचन सहाय नाम सुसाय गुरु के सर्व कारण पार सो पर से पार सो जाम तेरा अमर पाणे अमरा पद पाया गवाया बड़ा ज्ञान विचारे नानक पर स्वयं दर साच सत के व्यापारे पुख्या सुवात चाऊ दर दाय सा दियो

हाल दबल शोभा जगंत राम नाम लग लागे हर चौद आते तद प्रभु स्वभाव साध संगत मिलाए बड़ पाता सब दूजा पा दुख हो मनमुख जम जो है।

साध संगत बिना भाओ नहीं उपजे पा बिन भगत न होई है तेरी होए है तेरी कह रविदास इक बेनती हर सों पैज राखो राजा राम मोरी नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के ना बिन झूठे सगल पा सारे रहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा नाम तेरा केसरो ले छुटकारे नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो खस जपे नाम ले तुझे को चारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पहु जे आरो पवन सगलारे नाम तेरो धागा नाम फूल माला पारे उठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे किया अरपो नाम तेरा तुही चवर टुलारे दस अठाई अठ सठे चार खाणी वर्तन सगल संसार कर दस नाम तेरो आरती सत नाम अर भोग तुहार तनासरी बाणी भगतां की त्रिलोचने को ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंद सकाए भूली गोवारी दो किरत सो किरत थारो करम रीरा संकरा मस्तक बस्ता सुर सरी स्नान रे कुल मदे कुल जन मदे सिद मिलो सारंग पाण रे कर्म करो कुलंक मगटी श्री विश्व विशाकाश दास दीपक संवामी तांचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ तांचे बाद भाव कर्म कर अरण पिंगुलारी अनक भांत हरता त्रै पवन नाथ री तीर्थ तीर्थ परमता लहे ना पारी कर्म कर बालमुखी सरी अमृत शशी तेन लक्ष्मी कुलक्तर शिखर सुनागर नदी चे नाथ कर्म कर खार मुखी सरी दादी ले लंग साल मिसल आन तो किए ले हरी कर्म कर कसौटी मुखी सरी पूर्व लो कृत कर्म नाम तेरे घर गहन तांचे मोहे जापी ले राम चे नाम बत्र लोचन राम जी श्री सैन धूप दीति धूप दीप करत साज आरती वारण जाओ कमला पति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दी अरा निर्मल बाती तु निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जाने पूर्ण परमानंद बकाने बदन मूर्त पै तार गोबिंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो धूप दीप निवेदा कायो पूजो पाती काया बहुखंड खोजते नव निध पाई ना किछ आयबो ना किछ जायबो राम की दोहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा परमय परम तत् है रायारता जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता रहा दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो अपनी आशा दनिया निका अनाज मंगो सत सीका गौ भैंस मंगो लवे री एक ताजन तुरी चंगेरी कर की गी हन चंगी जन धना लेवे मंगी जत श्री महला चौथा कर पहला चौप देखो ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया गुर हाथ तरियो मेरे माथा जन्म जन्म के केल विख दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम हर अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाऊ

प्रभु को जो चाहो सोई सोई पाव आसा मनसा पूरो जप प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबू चूरो बुज प्रभु को जय श्री महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके गड़गड़ तसे बसेरा राव सूखे राधन दुखे राधन बिसरे ना काहू बेरा

न आवे। पुत्र मित्र विहार बनता एह करत बिहावे, पुज दिवस आए लिखे माए दुख दुख धर्म दूते डिठिया। किरत ना मिटे किरत कर्म ना मिटे, नानक हर नाम धन नहीं खटिया। उदम करे अनेक अर गुण गावई, परमे जुने संख मर जन में आवई। पशु पंखी सैल तरवर

तुमरा जस गावे करते से जन कबू न मरते झूर धंद बंद बन से माया के सा के साधु संगत मिटे बसूर सुख संपत भोग इस जी के बिना नानक जाने कूर ठोडी माला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिण रह ना सकू बिन प्रीतम दर्शन देखन को धारी मन आस राव सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किलविक नास पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी विमल जांको जास संत प्रसाद मेरे पूर्व मनोरथ कर कृपा भेटे गुण दास सांसै सुख मन में उपजो कोट सूर नानक बरगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन राव सुंदर सुगड़ चतर सब बेता रिद ना दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम पू बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा नथियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल तृण की अगन मे की छाया गोविंद भजन में नारका जल राव छोड़ सियाण बौचित राई दुहे कर सा जोड़ साध पग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का उत्तम फल वेद बुख्यान करत साधु जन भाल

आई। एकादशी व्रत कह रहे काहे को तीर्थ जाई, भणत नाम दियो सुकृत सुमत भय गुरमत राम, कहे को नाम वैकुंठ गए।

श्याम को, नमे मति राम आचे राम श्याम को, बिंद गो राग बैराड़ी माला चौथा कर पहला दुपति को ओंकार सतगुर प्रसाद सोन मान्या कथ कथार नाम रिद बुद्ध सिद सुख पावे भज गुरमत हर राम राम राव नाना ख्यान पुराण जस उत्तम कर दर्श

श्री वाहे गुरु साहब जी, जो दिन आवे सो दिन जाहि, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवना श्री ऊपर मरना। सतनाम श्री वाहे गुरु साहब जी। सोरठ महला पंजवां, ऐथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, ऐथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरायण सास सास समाली, पूर्ण सबनी थाई रहाव, आप सुहाई हुआ, सच्चे दा सच्चा ढोआ, तेरी भगत वड्याई,

तेरी भगत वडियाई पाई नानक प्रभ सरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ति आजुनी सह भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानको सी भी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह स्याणपा लख हो है ता एक न चलै नाल किव सचियारा हुई है किव कूड़े टुटै पाल हुक्मर जाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी ओवन अकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी ओवन जी आ हुक्म लै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है कि न हुक्मी बगसी से हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बार हुक्म न कोय नानक हुक्मे जे बुझै ता हमे कहे ना कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन खेह गावे को जी लै फिर देह गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेख आदरा हदूर कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक विकसे वे प्रवाह साचा साहेब साच नाए पाख्या पाहु अपार आख है मंग है देहे देहे दात करे दातार फिर के अगै रखी आए जित दिसे दरबार मोह के बोलन बोली आए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाव वडे आई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानकी वह जानिए सब आपे सचियार तापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निधान गावी है सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिहा समाई गुर ईसर